0: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियाँ, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर। सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड कैंटन रोड और 66 मोनार्क परेड लंदन रोड मिचम। फोन 0208-909-3030 और विजिट asianfuneralcare.com।
1: The all-new, all-electric Toyota CHR Plus. Sleek, stylish and quietly reliable. Available with 0% APR representative with £1,500 deposit contribution and save £1,500 with the electric car grant. Get that Toyota electric feeling. Visit your nearest Toyota center. Price from $34,495, available on Toyota PCP when financed through Toyota Financial Services by 30th of June 2026. Optional final payment, indemnities may be required. See website, T's and C's apply.
2: My mum started cooking with Khanam Ki in the 70s. Dal makhani, butter chicken, these have been my family's favorite dishes. Using Khanam Ki for 3 generations. The aroma, that creamy melt in your mouth, satisfying taste. Ah, now my kids insist I use this superfood for their eggs and lamb chops.
3: Mom, is the dinner ready? As I can smell the Khanam Ki.
2: Khanam Ki, the legacy lives on.
4: Khanam Ki, a brand from SOP International. Available at all major supermarkets and your trusted local Asian supermarkets.
5: In 10 meters, take a left at the pile of washing.
6: Sorry, what?
5: At the Valley of Toy Dinosaurs, approach the kitchen with no room to cook.
6: Huh?
5: Turn right at the floor drove.
6: A floor drove?
5: You've reached chaos. Recalculating.
6: No,
5: suggest immediate course correction to IKEA for fitted wardrobes, children's storage, and cupboard organizers.
7: Find your way back to calm. Discover smart storage at your local IKEA now. IKEA, the wonderful everyday.
8: दावत एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती आपके लिए लाए हैं £2,000 का हॉलिडे जीतने का मौका, साथ में 150 pounds के वन फॉर ऑल रेस्टोरेंट वाउचर्स। अभी एंटर कीजिए एट winwithdawat.com या फिर इसका QR कोड आपको जहां भी नजर आए उसे स्कैन कीजिए। दिस कॉम्पिटिशन रन्स फ्रॉम 6th मई टू 6th अगस्त। यू मस्ट बी 18 और ओवर टू एंटर, विथ वन एंट्री पर हाउसहोल्ड, टीज एंड सीज अप्लाई। विजिट winwithdawat.com और याद रखिए, राइस इजंट जस्ट राइस अंटिल यू हैव ट्राइड Dawat Extra Long Basmati.
9: Add some sizzle to your bank holiday with Lidl on our range of deluxe hot dogs and burgers. Now 20% off with Lidl Plus. Tender, juicy and almost a little too moorish. Lidl, more to value.
10: 18 plus GB only while stocks last. Terms apply. See lidl.co.uk/lbtv. Offer ends 27th of 5th, 26.

0: सिनेमा पर देखिए मेगा डबल प्रीमियर दे दे प्यार दे टू स्टारिंग अजय देवगन एंड रकुल प्रीत सिंह।
1: तूने बता दिया ना सब घर पे?
2: कोर्स बता दिया।
3: थोड़ा बड़ा है मुझसे एंड ही इज डिवोर्स्ड सो।
4: कैसी बातें कर रहे हो बेटा?
5: मुझसे 1.5 साल छोटा है आदमी।
0: देखिए मेगा डबल प्रीमियर दे दे प्यार दे टू आज शाम 6 बजे UK और 7 बजे CET आपके अपने जी सिनेमा पर। अवेलेबल ऑन Sky 708, Sky Glass 713, Virgin Media 810, BT 395.
6: It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
7: Get that Toyota electric feeling with the all-new, all-electric Toyota Urban Cruiser. Available with 0% APR representative and £1,500 deposit contribution. And save £1,500 with the Toyota electrified saving. Visit your nearest Toyota center. Price from $299.95. Available on Toyota PCP when financed through Toyota Financial Services by 30th of June 2026. Optional final payment indemnities may be required. See website conditions apply.

0: सिनेमा पर देखिए मेगा डबल प्रीमियर दे दे प्यार दे टू स्टारिंग अजय देवगन एंड रकुल प्रीत सिंह।
1: तूने बता दिया ना सब घर पे?
2: कोर्स बता दिया।
3: थोड़ा बड़ा है मुझसे एंड ही इज डिवोर्स्ड सो।
4: कैसी बातें कर रहे हो बेटा?
5: मुझसे 1.5 साल छोटा है आदमी।
0: देखिए मेगा डबल प्रीमियर दे दे प्यार दे टू आज शाम 6 बजे UK और 7 बजे CET आपके अपने जी सिनेमा पर। अवेलेबल ऑन Sky 708, Sky Glass 713, Virgin Media 810, BT 395.
6: With LV, I can get my car insurance from just £299, just the price I'm after right now. And if I'm hit by an uninsured driver, I won't lose my no-claim discount, because insurance is simple when it's me and LV.
7: No wonder we're rated excellent on Trustpilot. Get your quote today at lv.com. 10% of new customers pay £299 or less July to December 2025. Uninsured driver promise is non-fault accident only. Other vehicle and driver details required. LV General Insurance is part of Allianz.
8: Advertise on the UK's number one commercial Asian radio station. Call the Sunrise Radio sales team today on 020 8574 7777.

0: Please apply.
1: Imagine a place where you can escape for a day. Get immersed in a world of rooms, inspiration, and expertise. Where you can laze in luxury accommodation. And kids can feast from 95 pence. Tickets are free to everyone and include all the attractions. You've just imagined a day out at IKEA. IKEA, the wonderful everyday.
2: हिमालय कार्पेट्स की मेगा बैंक हॉलीडे सेल शुरू हो चुकी है. 500 से ज्यादा कार्पेट रोल्स 30% तक रिड्यूस्ड. तमाम रूम साइज रेमिनेंट्स पर अप टू 40% ऑफ. वाइनल्स और रग्स सब पर रिडक्शंस. हिमालय कार्पेट्स की बैंक हॉलीडे सेल इज नाउ ऑन. साउथ हॉल ब्रांच में तशरीफ लाइए या विजिट himalayacarpets.com.
3: जी सिनेमा पर देखिए मेगा डबल प्रीमियर दे दे प्यार दे टू स्टारिंग अजय देवगन एंड रकुल प्रीत सिंह.
4: तूने बता दिया ना सब घर पे?
5: कोर्स बता दिया.
6: थोड़ा बड़ा है मुझसे एंड ही इज डिवोर्स्ड. सो
7: कैसी बातें कर रहे हो बेटा?
8: मुझसे 1.5 साल छोटा ही आदमी.
3: देखिए मेगा डबल प्रीमियर दे दे प्यार दे टू आज शाम 6 बजे UK और 7 बजे CET आपके अपने जी सिनेमा पर. अवेलेबल ऑन Sky 708, Sky Glass 713, Virgin Media 810, BT 395.
9: The Sunrise Breakfast Show, brought to you by Well Baby and Well Kid. Ideal vitamins for children from Vitabiotics, the UK's number one vitamin company. Available from pharmacies, supermarkets and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com.
10: This is Sunrise, the UK's biggest.

0: Wedding culinary expertise to every celebration. A recently refurbished Grade II listed 19th century manor house set within 22 acres of breathtaking grounds. Enjoy beautiful outdoor ceremonies, our spectacular garden suite for up to 500 guests, or two intimate spaces for 160 with 71 bedrooms, parking for over 300 vehicles, and a location just off Junction 19 of the M25. Every detail is effortless. Call 0208 903 880 or visit huntonparkhotel.co.uk today.
1: हिमालय कार्पेट्स की मेगा बैंक हॉलीडे सेल शुरू हो चुकी है. 500 से ज्यादा कार्पेट रोल्स 30% तक रिड्यूस्ड. तमाम रूम साइज रेमिनेंट्स पर अप टू 40% ऑफ. वाइनल्स और रग्स सब पर रिडक्शंस. हिमालय कार्पेट्स की बैंक हॉलीडे सेल इज नाउ ऑन. साउथ हॉल ब्रांच में तशरीफ लाइए या विजिट himalayacarpets.com.
2: Advertise on the UK's number one commercial Asian radio station. Call the Sunrise Radio sales team today on 020 8574 7777. This is Sunrise, the UK's biggest.

0: quality foods.
1: अरे मुझे हेल्प कीजिए ना, मुझे कई गिफ्ट्स चाहिए।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आए,
1: और शादी की ज्वेलरी भी चाहिए।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आए,
1: और हमारे सोने की वैल्यूएशन।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आइए, साउथ हॉल में दो ब्रांचेस के साथ,
3: 90 and 130 द ब्रॉडवे साउथ हॉल, सबसे सोना साडा सोना।
2: वसीम ज्वेलर्स,
4: वंडर्स अवेट दोज हु डेयर टू वंडर। डिस्कवर अ वर्ल्ड ऑफ फेयरी टेल्स, थ्रिल्स एंड एडवेंचर। Efteling, World of Wonders, Holland's most wonderful theme park resort. Book tickets and stays at efteling.com.
5: हिमालय कार्पेट्स की मेगा बैंक हॉलीडे सेल शुरू हो चुकी है। 500 से ज्यादा कार्पेट रोल्स 30% तक रिड्यूस्ड, तमाम रूम साइज रेमिनेंट्स पर अप टू 40% ऑफ, वाइनल्स और रग्स सब पर रिडक्शंस। हिमालय कार्पेट्स की बैंक हॉलीडे सेल इज नाउ ऑन। साउथ हॉल ब्रांच में तशरीफ लाइए या विजिट himalayacarpets.com।
6: The Love Lounge on Sunrise, brought to you by ZTV's Tum Se Tum Tak. Daily at 8:30 p.m. on Sky 707, Virgin 809 and Z5.

0: The Love Lounge on Sunrise, brought to you by ZTV's Tum Se Tum Tak. Daily at 8:30 PM on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
1: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट मेरा बॉयलर.com। T&Cs अप्लाई।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: The Love Lounge on Sunrise, brought to you by ZTV's Tumse Tum Tak. Daily at 8:30 PM on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
1: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियाँ, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर। सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड, कैंटन रोड, और 66 मोनार्क परेड, लंदन रोड, मिचम। फोन 0208-909-3030 और विजिट एशियन फ्यूनरल केयर।
2: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
3: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रैजिक होती है।
4: From the makers of Rocky और Rani की प्रेम कहानी, Dharma Productions presents Chand Mera Dil. Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil, coming to cinemas on May 22nd.
5: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
6: हिमालय कार्पेट्स की मेगा बैंक हॉलीडे सेल शुरू हो चुकी है। 500 से ज्यादा कार्पेट रोल्स 30% तक रिड्यूस्ड, तमाम रूम साइज रेमिनेंट्स पर अप टू 40% ऑफ, वाइनल्स और रग्स सब पर रिडक्शंस। हिमालय कार्पेट्स की बैंक हॉलीडे सेल इज नाउ ऑन। साउथ हॉल ब्रांच में तशरीफ लाइए या विजिट
7: himalayacarpets.com।
0: The Love Lounge on Sunrise, brought to you by ZTV's Tumse Tum Tak. Daily at 8:30 PM on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
8: Hey, this is Paul Shah. Don't forget to join me weekdays on Breakfast with Vitabiotics from 6 AM. Hey, if I can get up that early, so can you. Don't be lazy.

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Flying to India or Pakistan? Book with Southall Travel. Unbeatable prices guaranteed. Find a cheaper ticket within 24 hours and we'll refund the difference. Call 0208 574 8410. 24 hours a day. Southall Travel. At all protected.
1: Noticed a change in your hearing? Well, get a hearing check from Specsavers. Oh, not sure where to start? Well, we're very flexible. Book one online, on the phone, on your lunch break, on Saturdays, on the same day if you're lucky. Oh, you only miss the odd word. But what if the odd words you're missing are nice ones like love you, or important ones like duck? Oh, too expensive, is it? All right, we like you. We'll do it for nothing. For free hearing checks, should have gone to Specsavers.
2: The future is unpredictable at times, but the Open University are the experts in online learning, allowing you to fit study around your life. What's more, you'll have support from dedicated tutors every step of the way. Now, suddenly your possibilities are open. Search the Open University to find out more. The Open University. The future is open.
3: जीतिए £2,000 का हॉलिडे या फिर £150 के वन फॉर ऑल रेस्टोरेंट वाउचर्स दावत एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती के साथ. दावत आपके लिए लाए हैं अ बिग राइस वीकेंड एट पैक फूड्स ऑन नॉटिंगहम चेस्टरफील्ड रोड लेस्टर 30th और 31st मई को बिटवीन 9 AM एंड 5 PM. पाइए अमेजिंग ऑफर्स सिर्फ इस वीकेंड पर वाइल्ड स्टॉक्स लास्ट. द कॉम्पिटिशन रन्स 6th May टू 6th August. अभी एंटर कीजिए winwithdawat.com पर या फिर QR कोड स्कैन कीजिए. यू मस्ट बी 18 और ओवर टू एंटर. वन एंट्री पर हाउसहोल्ड. T's and C's अप्लाई. विजिट winwithdawat.com एंड रिमेंबर, राइस इजंट जस्ट राइस अंटिल यू हैव ट्राइड दावत एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती.